0: किसी से न तमाम वजह दे बाहर में माता से रिता थी इनका नो नहीं बोले अफेयर का जो वाचा साउदी बाकुमला से ना पूजा बक्की में पिसल
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: किरीक्षण तमो बहदे बाहु जो माता से रहित थे फल नो नियो बले अफेत जो वाता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्तीन बिसन
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.